0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है
1: सो
0: बख्शी साहब, क्या बात है जी। बाखूब जी बाखूब।
1: जी।
0: फ्राइडे वाला दिन तुसी रौनकां लाइयां नाल नाल, बहुत बहुत शुक्रिया ते हैव ए नाइस वीकेंड
1: जी
0: तुहानू भी जी।
1: सेम टू यू,
0: थैंक
1: जिंदे
0: यू,
1: वास्ते रहो,
0: थैंक यू, सत श्री अकाल जी। लो दोस्तों, इस मुहम्मद जी
1: सत श्री अकाल।
0: बा खूबसूरत ते प्यारी आवाज ते उन्हां दा अंदाज गीत गाउण दा ते एक्सप्लेन करन दा, गल्लां बातां दे विच वी बाकमाल अपना है जिहड़ी गल रखदे है। ते लो दोस्तों, जांदे जांदे संखेप दे विच सब दोस्तां नूं नाल जोड़ के फिर आग्या लैना इक अद्धे मिंट दे विच ही। सुरजीत भारत जी ने इंडिया तों सत श्री अकाल भेजी है ते इसे तरह ही अपने इकबाल मांगड़ जी सत श्री अकाल, सुरेंद्र कौर माल जी ने सत श्री अकाल, हरविंदर जौल भैन जी ने सत श्री अकाल भेजी है। ते लो मामा भैणा ते धीआं नाल जुड़न लग गईआं ने फिर तों अपने नाल, ते वापसी हो चुकी है सब दी। ते माल भैन जी भी चेते करदे सी जौल भैन जी नूं काफी दिनां तों, ते सारे होर भी अपने भरा जिहड़े ने उह भी चेते करदे सी। ते इसे तरह ही अगे राजन सैणी साहब लाइक नंबर 5 कहिंदे ने, ते सत श्री अकाल जी सारे प्यारियां नूं समूहिक रूप दे विच। औजला साहब ने सत श्री अकाल फतेह सांझी कीती है। ते सतनाम सिंह जाणिया चल बाई जी ने सत श्री अकाल भेजी है। गुरुमान जी दे बहुत सारे सुनेहे ते सत श्री अकाल भेजी है। ते सब दोस्तां नूं भी फतेह सांझी करदे आ, नाल कमेंट भी उन्होंने कुछ लिखे है सारिआं दे, मैं जरूर कॉपी पेस्ट कर दांगा ते बाद दे विच मैं जरूर पढ़ांगा। दोस्तों अज समां काफी हो गया, माफी चाहुंदा कल दे लई वी। दोस्तां ने सज्जनां ने पुछिआ सी कल आ नहीं सके, हांजी जिवें आपणे गल करके कहने डेनमार्क तो बाई कहिंदे तुसी उत्थे लिख दिता कि टैक्नीकल इशू, पर मेरे निजी कुछ रुझेवें सीगे जी, ते उस करके मैं माफी चाहुंदा कल नहीं जुड़ पाया। महीने दे विच इक मीटिंग हुंदी है, उह जरूर अटेंड करनी पैंदी है जॉब दी, ते इस करके महीने दे विच इक छुट्टी जिहड़ी मारनी पैंदी है इस करके। ते जेकर टाइम सिर वापस आ जाइए तो जरूर तुहाडे नाल जुड़ जाईदा आके वापस। ते गुरीमान जी कहिंदे आ सत श्री अकाल सारे दोस्तां नूं, बहुत सारे सुनेहे ने उहनां दे। ते अपने नरिंदर सिंह बाई जी जुड़े होए ने, सुखबीर बादल ने क्या कीता कहिंदे जी, ते बाई जी शुक्रिया धन्नवाद निघा स्वागत है। हांजी उहनां दे उत्ते अटैक होया जी, इह गल 2 दिनां तों चल रही है मीडिया दे विच वी। ते इसे तरह ही औजला साहब, गुरीमान जी ते अपने मुकद्दर जी, राजन सैनी जी ते अपने मान सिंह सैनी साहब हैलसिंकी तों सारे जुड़े हुए ने, सत श्री अकाल भेजदे ने। रजिंदर जीरा जी बाई जी जुड़े हुए ने जीरे तों, सत श्री अकाल भेजदे आ सारे दोस्तां नूं, मित्रां नूं ते दुआबा रेडियो दी टीम नूं। ते मुहम्मद जी जुड़े हुए ने, सत श्री अकाल भेजदे आ। ते इसे तरह जगतार भारत जी ने इंडिया तों सत श्री अकाल भेजी है। ते दोस्तों जे किसी दोस्त का नाम रह गया हो माफी देना मैनू। ते सोमवार नूं मिलन दे वादे दे नाल मुलाकात होगी कल नूं महफल मित्रां दी लैके, समाजीत सिंह शमी जी जिहड़ा जरूर जुड़नगे ते गल्लां बातां उहनां दे नाल भी 8 वजे भारतीय समय दे अनुसार 2 दिन करनियां तुसीं, ते कुछ गल्लां बातां सुणनियां ते कुछ कहणियां ने, ते हर तरां दी गल्लबात उस प्रोग्राम च हुंदी है। ते सोमवार नूं तुहाडा मेरा राबता फिर जुड़ेगा ते 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। दोस्तों चंगा लग्या होवे तां दोस्तां तक मित्रां तक जरूर प्रोग्राम सांझा कर दिओ, ते जांदे जांदे उहनां दोस्तां दा वी धन्नवाद जिन्हां ने प्रोग्राम नूं सपोर्ट कीता है। हरविंदर जौल भैन जी, जगदेव संधु बाई जी, सिकंदर सिंह औजला, महेश जी, भान सिंह गरेवाल जी, सुरेंद्र कौर माल जी, मान सिंह सैणी साहब ते बलवीर सिंह सैणी साहब दा बहुत बहुत शुक्रिया ते धन्नवाद है। दोस्तों यूट्यूब नूं जरूर जिहड़ा सबसक्राइब कर लो, कोई पैसा धेला नहीं लगता। दुआबा रेडियो ऑफिशियल पेज अपना फेसबुक दे उत्ते भी आ, उहदे उत्ते भी फॉलो ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, उहदे विच जुड़ सकते हो, प्यारा जिहा नाम लिख के भेज दो, ग्रुप च शामिल कर लो। +358 44 976 19 वट स्टूडियो का नंबर है उहदे उत्ते जी। ते कोई वाधू मैसेज नहीं आउंदा ते टैलीग्राम दे उत्ते भी दुआबा रेडियो नूं सर्च कर सकते हो, ते उहदे उत्ते ऑडियो ते वीडियो दे रूप दे विच दोवें रंगां दे विच प्रोग्रामां नूं माण सकदे हो। ते लो दोस्तो, वध घट बोल गए, गुस्ताखी माफ, किसी नूं ठेस पहुंचाई होवे तां माफी चाहवांगे। साडा मकसद इह नहीं हुंदा किसी दे विचारां दे नाल मतलब कि सहमति जताउणा हर किसी दे, ते हर किसी दे अपने विचार ने, उहनां दा वेलकम है जी। ते बहुत बहुत शुक्रिया, विचार करांगे तां कुछ दूर तक गल्लां जाणगीआं, ते विचार वटांदरे दे विचों कुछ ना कुछ चंगी सेध मिलदी है, इही अपना मकसद है। ते जागरूकता इक दूसरे दे विच आवे, फैलाईए, ते जिहड़े दोस्त जां लोक जिहड़े इन्हां चीजां दे विच गुमराह हुंदे आ उहनां चीजां तों बच सकन, अपनी जिंदगी अपने तरीके दे नाल वधिया ते सुखामी परिवारां दे विच गुजार सकन, ना कि जेलां दे विच जां कुछ ऐसे कारनामे करके ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।

0: क्या बात है।
1: तेरी फोटो वेख वेख होके रहा पर दी, तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस कर दी। तेरी फोटो वेख वेख होके रहा पर दी, तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस कर दी।

0: Radio.
1: हो जमला जट मुबहल ते, जमला जट मुबहल ते, आ लोगों ने फरमाउंदा, आ गंत पे आप तो मेरे ओ मैं हुन नी गाउंदा, जमला जट मुबहल ते, हो जमला जट मुबहल ते। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना काशीनाथ, तुसीं सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज़।

0: वाह वाह वाह, क्या बता।
1: जी सर, एक उन्ना मिले तो मैं ना दविंदर कोहिनूर दी भी वधिया हो करदा हुंदा सीगा जी, ते हुण पता नहीं थोनू किवें किवें लगू ओ जेहड़ा रीमेक्स जिहा सॉन्ग आया सी ना जी,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ते कहिंदा तेरी मस्ती एक महीने दी
0: वाह
1: जेड़ी नित दा गेड़ा रख दी सी, मैनू शक जिहा पैंदा सी नाले खबी अख फरक दी सी, महिला दा मुड तो शौक रहा महिला।

अपना, हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना।

0: कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। धन्यवाद शमी जी।
1: वाह जी वाह, इतना खूबसूरत गीत है, देखो बड़ा प्यारा। जदों भी आपां इहनूं सुणदे आं, एक अलग ही दुनिया च टाइम ट्रैवल करा दिंदा बंदे नूं,
0: बिल्कुल
1: और बहुत ही कमाल है।
0: हाँ
1: इस च दोनों एक्टर जिहड़े
0: हाँ
1: आ उह शत्रुघ्न सिन्हा ते विनोद खन्ना, उहनां दी क्या बात है।
0: क्या
1: ते
0: बात है।
1: मीना कुमारी जी, उह च इक जगह हुंदा है कि उह शत्रुघ्न सिन्हा लड़ाई करन आउंदा इहदे घरे, ते उह अगे मिलदा नहीं
0: हाँ
1: घरे,
0: जी
1: भाई दूजा हीरो उहनूं आ कहिंदा, वाह तो कह देना
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: खाई नू आया था, इतनी गर्मी है खून में
0: हाँ जी
1: गवा
0: हाँ
1: जाए मैदान में,
0: बिल्कुल
1: आइंदा मेरे लड़कों को हाथ लगाया तो बस्ती के बस्ती को जलाकर राख कर दूंगा, नाली मुड़ जाता
0: शमी जी ये गाने करके मैं हुने फिल्म फिर लिखी है दोबारा, पहले
1: जी।
0: भी देखी होनी है 1971 च आई सी, पर हुण गाना मेनू बहुत वधिया लग्या ते
1: बहुत
0: फिर
1: बढ़िया,
0: दोबारा देख के सारियां यादा ताजा हो गया।
1: क्या बात है,
0: ते मैं भज के गड्डी फड़ी है अज सानू
1: बिल्कुल
0: लेट कर
1: जी,
0: रहे हैं।
1: बहुत कमाल
0: मोहब्बत
1: जी,
0: जिंदाबाद, जिंदगी
1: जिंदगी
0: जिंदाबाद,
1: जिंदाबाद जी
0: शमी जी का बहुत धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद,
1: जी
0: साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।
1: मुर्दाबाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, क्या बताएं क्या बताएं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जा रही है। दोस्तों क्या बताएं क्या बताएं, सैनी साहब होरां ने मेरे अपने फिल्म दे विचों कमाल तमाल तमाल तमाल कर दिती है, और तो शिकायत देना अच्छा कमाल हो गई। दोस्तों वंशित शर्मा जी क्या कहते, सर जी लव यू लिखा उन्होंने, बिल्कुल जी लव यू, क्या बात है। भान सिंह गरेवाल जी कहते क्या बात है शमी जी, ए भाई शत्रु बई ने मतलब शत्रुता निभाई सी पूरी बई नाल, और सिट्टा कटिया सी कि जदों विच पॉलिटिक्स आ गई, फलाना आ गया ढमकाना आ गया, तो बैंड बन गया जी वो, नौजवान जड़े आई लड़ी जाते एक दूजे नाल, हाल चाल ठीक ठाक है, ये सारे ओहदे गाने सी, बड़ी प्यारी है पई है यूट्यूब ते भाई देख लियो, मतलब नजारे ए अपनी तरह का जिहड़ा किस्सा है इस फिल्म का, भी किस्सा भी की है भी उदों भी जे आपां 1947 दी फिल्मां देखिए ओहदे विच बड़ा वड्डा सवाल है बेरोजगारी, उदू बाद 50 वाली 1950

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी, तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

0: सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठे के कली मैं। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठे के कली मैं, हुन साम के रख लै माए, हुन साम के रख लै माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी थां नहीं, जिथे मेरे जोगी थां नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी मां नहीं, मेरी ता अपनी बनी मां नहीं, बेगानिया च पोगल नू भेज के माए, बेगानिया च पोगल नू भेज के माए, कीता अखां तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी। काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाणे दी डोले नी, काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोले नी, मैनू पाने दी डोले नी। शुक्रिया साथो, बहुत बहुत मेहरबानी।
1: प्यारे श्रोतियो, सुरेंद्र भोगल जी तो बाद हुण असीं सद्दा देण जा रहे हां इंग्लैंड वास्ते शायर तारा सिंह जी नूं। तारा सिंह जी वैसे दे पंजाब दे जिला जलंधर दे एक वड्डे पिंड कोकड़ पिंड नाल संबंध रखदे ने ते बहुत लंबे समय तों ओह बर्मिंगम दे नेड़े रहिंदे ने। उत्थे ओह इंडियन वर्कर एसोसीएशन दे नाल जुड़े हुए ने। इस दे नाल दी नाल ओह अपनियां मनोभावनावां नूं जिहड़ा आ ओह कविता दे विच व्यक्त करदे ने ते ओह साडी काम महफिल दे विच पहली वारी आ रहे ने। उहनां दा असीं स्वागत करदे हां। तारा सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੀਤ ਹੈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਛੂਣਾ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜਿਸਮ ਤਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਮੁਰਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਲਈ ਹੈ।

डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला।

ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे, जिंद वादे आचे डुब गई, जिंद वादे आचे डुब गई।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।